0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत

0: बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
0: जी
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओं, जहां तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है?
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है श्रोताओ, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है।
0: जी
1: यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं, ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
0: जी
1: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4400-559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।

0: डर है, कोई ना कोई वजह होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है।
1: अच्छी परी तो बहुत अच्छा है।
2: महाराज की
3: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी
3: सेवा में सदैव तत्पर,
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
3: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
3: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
7: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
3: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
7: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज, आप बहुत
9: महाराज की जय हो,
10: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
7: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
3: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे, क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
3: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
4: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
3: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
4: धन्यवाद महाराज।
7: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
4: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
3: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
4: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
3: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
4: जी धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
3: क्या? और कोई शंका?
4: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?

0: मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
1: महाराज की
2: जय!
1: महाराज की
2: जय!
1: महाराज की
2: जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
5: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू।

तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा

0: बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।